एसएस आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईक सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सेंजा

0: सुमित नहीं अहिले हाम्रो गर्नेमा 8 बजेको छ।
1: ए समय को साथ में जितु सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ। 105.4 आत्मिक ख्याल राख्नुस् है।

ए पानी को मूल जसरी उड़ी यो मन में कसरी तिम्रो नै ठेगाना सोधेर आइपुगे तिमीलाई रोजेरा।

सतायो तिम्रै चिन्ताले छैन नि घर तिन्ताले नखोजा मायामा विद्यारधन चल्छ नि संसार मिलेर मन।

बनाई थे माया को दरबारा, पर्दे ही न संपत्ति घर बार, गर्नी छु माया अनगिनती, न छोड़ा साथ घर छु बिनती।

ए माया को ठुलो बाजार मा नबेच्नु दिल हजार मा पवित्र माया तिमीलाई नराख्नु दिल मा अरुलाई।

फ्रेश आदि फ्ला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सैंजा।